mi yuk zi jil lo sum chis. Nye chua kwa ho. Nye mi lam na li ra ti ka xe ta chu. Ine ra ta ka yon du ma chu. Nga ra ra to ti si ya be. Ti ri. 没想到天来你这几个你让人连接还要不赢你们敢拿了直接点数啊你死不到了你死不到了把老虎老姐你不求的没多 나 교비지기 나 무대 교비지기 내 보거든이 카제사 교비지기 가마제네 요구유 내 자를 고차고 지야 가리이나 제조 야오디 제스 카제다 보거든이 그들아 맵스 ये मुने बेचे ची कुजी ने ला था बसो रामा चो को ल रांगे ये सल आशा की यो याती ना ना वो सो आ यो बस बा ये इने के या नी मा से बचे अरे जिंग दे सा या ची तो ने खाने तो जे से सा 让龙给捉起不是麦子花明妈也对让给当妖精一年两个其他店了让人现活也没多让今天给妹妹是人想你妈见回见 让了光大生意

0: अच्छा दादी
1: अच्छा दादी जी जी जी
2: जी
1: जी ला
2: जी तो
0: राल सी जी मिंग तो आ वो नहीं चोंग छियो
2: ये मी किरा से लोग
0: चोंग
2: छिदा जी मा किरा जे जी दिन ना शो छियो जी वो
3: सेम दादी让俺堂头把这些的收益，我做这干的，实际钱不掏不着。你让这，
2: 呀，你这人接了，给做呀是的，俺给做干不也？
0: 啊，俺做干不也？
3: 俺让干不着的。
2: 呀是呀是。
3: 着的，让个新月呗。你你妈呢？让干不起来月。着的，你让金素写呗。
2: 林辉，你这嘛是的？林辉，
3: 俺一起写的，着的。
2: 什么也的？
3: 俺。
2: 让开，金鱼，哥，你这让一个新的小姐开始干。